0: You are listening to Radio Ahmad Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: आपका अपना रेडियो, रेडियो में 88.4 नेटवर्क।

0: तालीम एक ऐसी दौलत है जिससे हम दुनिया की हर चीज खरीद सकते हैं। और तालीम बच्चों का बुनियादी हक है। अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। रेडियो अमन नेटवर्क, जवान रंग अमन।
1: दिल की बात प्यार के साथ, तो सुने अपना पसंदीदा रेडियो हर पल हमारे साथ। रेडियो अमन 88.4 करो।

0: आपने तो मेरी शो सुनी ही नहीं है।
1: नहीं, मैं उसे कहूंगी कि एक दिन आप मेरे साथ बैठ कर ये शो सुनो, फिर उसके बाद मेरे लिए प्रोडक्ट लो।
0: उसे कहना कि इसमें रिजल्ट है। अच्छा चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच।
1: मैं इसमें से ये कहूंगी कि अच्छा है रूम में चले, और जितने भी हमारे बने के लोग हैं, बहुत प्यार करने वाले लोग हैं, वो आपको जरूर प्यार देंगे। और ये जो आपका वो है ना, क्या कहते हैं, आपका नकल उतारना, इंशाल्लाह वो मैं सीख लूंगी, फिर इंशाल्लाह आपके साथ मुकाबला करूंगी कि किस तरह एक आर जी।
0: ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच। 3 साल गुजर गए, अभी आप सीख रही हैं। चलो ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ओके अल्लाह हाफिज़, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो, अस्सलाम वालेकुम जी। दावत मुंगसर सु खबर है कि विधि किम जुना शाजमा वजीर सर तो शो बरोबार तबियात से हाथ मिजाज आओ। बिल्कुल ठीक ठाक, फिट फाटिया दुआ गानी दी, दुआ गाने कवाई कजा सी आए तो दुआ गानी दी। हाँ जी चलो बस बिया टिक तो खा डेरा जा तो मानना, थैंक यू। अच्छा खा दार तो हुए छे सदी रवड़ी दी जिनार कॉस्मेटिक्स शोदा
1: शोदा हमदार रवड़ी दी कना। ये हलक नर वाला जाना हम तक लेके फरमाइश मैं पूरा
0: कर।
1: तो हलक नर का यूजर हटा ले जाओ।
0: अच्छा डलेगा
1: जिनार कर काम चाहता बनवाए। जिनार काम चाहता बनवाए, सके तो सेटिंग चाहता बनवाए। ओके जी कोशिश क्यों मादर सब ले गा महा।
0: ओके जी, वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू सो वेरी मच। यू जहान मनना हाजी, नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हेलो आई अल्लाह देखी रोकी चलते पक्के लाड़ो पता नहीं जी। नेक्स्ट कॉलर ऑफ द शो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो ओके जी, तासु कॉल होने में जगह जाए। हाँ अस्सलाम वालेकुम जी, दावत मुंग सर सु खबर के विधि किम जुना फकीराबाद ना फरियाल छोटी फरियाल का ना छुट्टी फरियाल सरंगे शाही बरबार रही तबियात ते से हाथ ते छुट्टी फरियाल स्कूल तो नहीं कैसा छुटाई दी। अच्छा हाँ ना ये स्कूल ना हो को लवशवी नहीं दी। अच्छा यकम ना कुल हुई जी, कुम क्लास के टू के। अच्छा पोजीशन रेडी के ना पहला पोजीशन के रखले वे, वाह जबरदस्त था। कुम स्कूल की है
1: गांधी
0: खास फरियाल दार तो वही अच्छी सदर वोड़ी दी शोता मड़ाई दो खोड़े लेगा ना मुंह तो देर वोड़ी दो क्यों मदो। हेलो ಮುತದಿರ್ ವಡಿ ಕನ ಅರೋಡ ಕನ ಸಟಿಮ್ ತ ಬರೋಶಿ ಏಕ್ ಬಜೆ ತ ಬರ್ವರ ಸೇ 14 ಮಿನಿಟ್ ತಿದಿ ಸರಾ ಬಸ್ ಟಿಕ್ ತು ಜ ವೇಟ್ ದರ್ ತಕ ಸಹಿ ದು ಓಕೆ ದೋ ಲಾಫೇಸ್ ಓಕೆ ಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ವೆರಿ ಮಚ್.

मतमु है। नेक्स्ट वीच ओके भाई, अल्लाह हाफिज भाई। मैं फातिमा। ओके फातिमा, थैंक यू सो वेरी मच। नेक्स्ट वैची, उम्मीद के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, जाना किसी जीना किसी आगे हाथ पिलाना अच्छा, हाथ पिलाना अच्छा नहीं लगता। इकबाल, मुझे दाने वालों की खतर में रखना, मेरे मलाइका तेरा देर के सिवा कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। सलाम टू हिनान में लवली छुट्टी हिना। ओके जी, थैंक यू सो वेरी मच जहान मन्ना। अच्छा खान, नेक्स्ट स्विच ही, हाय हाउ आर यू, आई एम इरान ब्राइर बुब्राई भाई, डेरे उरजे श्वेचे ता वाला शो में नवो वृदले जो बिजी हुआ उसमें दे पूरा खूब सॉन्ग प्ले का बलद अच्छे सलाम में वर्का हैंडसम गोलता आफियत है रहानता। ओके जी, न्यूट्रल लिसनर था। ओके जी, वालेकुम सलाम, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया शामिल होने के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। अच्छा जी खा, टाइम रसर खत्म दे अर्जुन को बिल्कुल तस्तो मिले वीजी पकड़ के आरजी रहा टक लेसिन कॉस्मेटिक सेंटर किसी मौजूद दे असलम बागी यानी सरहद मार्केट की मॉडर्न कश्मीरी बिक्रे सर टच और यूफन फ्रेंचाइज था बिल्कुल महामा खा। अर्जुन को दगा पूरा जिनार कॉस्मेटिक शुमुंगा वो कुपदे की मुंगा दखली दास अल्फाज वतली चागा पता सुबांदी बदले की दलवी बखाना माजिरत वाणु और दे सरा सरा अर्जुन को चिचर तक हम तासु जमाग गवाज और दिल्ली चे मतलब संगम तासो वे तासो बीजी वे तासो का गवाज और दिल्ली या तासो मतलब चरतर वान वे तासो पकिचन की चरत क्यों हम तासो का गवाज और दिल्ली नुयो जहान मनन कोमा। थैंक यू सो वेरी मच, दुमर ज्यादा तासो मीन रकड़े दा मुंग तक ना चे सहदी निश्तदा और मुंग ची सुमर हम खबरी कु तासो बांधे कमी दी मुंग तपारा अल्फाज कमी देशी खो गुरा पता सुबानी ज खबर कोमा नो मुंग पूरा शो बखतम शी और पूरा घंटा बखतम शी खुद सिफत बखतम निशी खा जिक दस जर सर दर तो माता सुमंग सुमर मीन रखे दा और दुन को दिन लबा चे चरत के हम तासु जमा गवाज और तासु योजा हान मनना यूजली ब्या और पखपलो दो वगाने की बमुंगा याद सताई मजीद मालूमात तो पारा बता सो कॉल कोई पसिफर 336-96-0764 बांदे या चा शिकायत भी पदी नंबर बांदे बिल्कुल व्हाट्सएप छता जबागा ओनर ता फॉरवर्ड को मा ठीक ता सो शक की समता शिकायत भी यु दुकानदार न मई मान मई बल न मई जबागा ता फॉरवर्ड को मा तासु बिल्कुल मुंगता मैसेज कोई और दुन को योजा हान मनना को मा इंशाल्लाह तासरबा सबाना बलो रजुजली ब्या हाजिरी जो तरह दे मुंगतरा करे इज्जत चीचर तवे होशाला उसे बादो से दलवेला पो अमान।

0: 4, 3, 2, 1, 4.
1: RJ Shahid Khan.
2: खुश खबरी। हुजीफा कंपनी वाला शिफा तेल का बड़ा दावा। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शिफा तेल का जवाब आपको नहीं मिलेगा। शिफा तेल अरब मुमालिक, यूरोपी मुमालिक, मलेशिया, चाइना वगैरह में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। शिफा तेल पुराने गंजेपन के लिए नहीं बल्कि अभी गंजे हो या गंजे हो रहे हो तो शिफा तेल के इस्तेमाल से बाल गिरना बंद हो जाएंगे, नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे, बालों को गन्ना लंबा करता है, खारिश, खुश्की, सिकरी खत्म, मर्द औरत दोनों के लिए यकसा मुफीद है।
3: अगर आपके बाल गिरते नहीं, गन्ने लंबे चमकदार भी है, खारिश, खुश्की, सिकरी कोई बीमारी भी नहीं है, फिर भी हफ्ते में एक बार या दो बार शिफा तेल से सर की मालिश करें ताकि आपके बाल सेहतमंद रहे, क्योंकि इंसान के 90% खूबसूरती हुस्न व जमाल बालों पर है।
2: हुजीफा कंपनी शिफा तेल, पिशावर, बन्नू, लक्की, करक, डीआई खान, खैबर पख्तूनख्वा, पिंडी, इस्लामाबाद के अक्सर जन स्टोर और बेकरियों में दस्तियाब है। नवी दरियाफ्त शवी ददवाथुर निशान वाला हुजीफा कंपनी शिफा तेल चेसड़ाए वख्तिनाए गंजाए नवी ओसोस गंजे शवी भी याए दसर वेख्तान गुर्जीगी नो अगा सड़ाए चे सो रजे शिफा तेल पखपल सरबा ने मालश की नो ददा पसरबो दुबारा नवी वेश्तान पैदाशी। शिफा तेल वेश्तान गुर्जवल बंदवी वेख्तान गण और उजद कवी देसर खारश खुश्की पीना पखा हम खत्म कवी जनना मर्दना द्वाड़ो दपारा बराबर फायदेमंद। मजीद मालूमातो दपारा पदे नंबर राबिता कवले शे 0331-397-3636 और बल नंबर दे 0335-352-33-33।

सुनिए खबरें। हजारे का खबर है सब मॉल नहीं रहेगा ना बस दगा खबर मैं कहूँ ना चितों से इस्तेमाल कीजिए जिफा कंपनी शिफा तेल निसार वस्तुन दुरान निसार वस्तुन बिल्कुल ठीक ठाक रोज और बार नहीं लवा बदन दर्द ना दी बदन दर्द ना होती बिल्कुल ठीक सी जी कचेरी बदन दर्द ना देखे डेर जूत भी से लुस मिला डिगी देखो जी जी दर्दी जी नो बिल्कुल खपके जमा परेशान के जमा पे इस्तेमाल का जोन पे गोड़ का मलशी का आगाजी पे गोड़ का चकीम जी से दर्दमंद है किम जी दे दर्दी जी खुशी जी नो बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हाउ कैन आई जी अदर दिनों हमेशा दे पुरा इंशाल्लाह अल्लाह ताला फजल करम करा बिल्कुल और कीजो ते तुसे बदानो हल्का कीजो टिकीजो जबरदस्त जुड़ी।

हाँ जी बिल्कुल आरोदा तो कोई जुगंद है अब अमेल्ला रहा है जो लश की हुआ सा शवी हुई वर्तर लश की हुआ मुझे की मदद अब यात वर सारा व्याल शवी हो खबर यात्री डीरी दी शिफा का स्मेटिक्स पाकिस्तान खुद शिफा कंपनी चिकिम प्रोडक्ट की दरे इस्तेमाल जरूरी हो गणे वेले से दादे तुसे दे मख सरमान या दे मख कुला चिकी मदो अगावा पास रो वाली दे तुसे मख बिल्कुल चिकी अभी दे मख दुने दुगीना डबीना तरचेरी बिल्कुल सफा चले दिमाग दिसवना के दुने दी गुजीरु गली दी दिमाग ते देर वक्त नहीं तार सिराई दारे देर जुत वक्त

हाँ जी सही बिल्कुल, तो मैसेज प्रोग्राम के बिल्कुल से मिलो कॉल लर्सी हो मजीद कॉल चुकम दे बड़ा सॉरी मैसेज हाँ चुकम दे अक्सर वही कहना चाहिए मैसेज शामिल नगल खफ कीजिए अला नूर बैठा नहीं मैसेज करे तो उसमें डेर ज्यादा मना ना क्यों प्रोग्राम के तो मैसेज बुक आओ दिन अलावा मैसेज करे दे इस्लाम भाई सरंग चल दाई आवाज दे ओके दे मिजरी भाई ते सलोम टोले सर ते सलोम इश्माज जिंदाबाद बिल्कुल दासी दे डेर ज्यादा मरे ना इश्माज जिंदाबाद और दिन अलावा हसन वजीर मैसेज करे दे फ्रॉम डी आई खान पर ग्लोबल 91 बने दे आवाज ओके दे विच प्रोग्राम दे वोर वडे रजिया तो मरना हसन वजीर और वे नेक्स्ट सलाम भाई जान आवाज ओके दे लंडीवा छे लकी बांदे आवाज करक बांदे छे दवाड़ बांदे वोर वा बिल्कुल लंडीवा के जमील खान सिर्फ चुकम दाए दे आगे सर देश मा टोल प्रोडक्ट उस मिला वी जी ठीक छ मुझे कल हां दसे अडी हां तरफ त सही या नवरंग तरफ त सही नो पर लंडीवा बांदे जरूर स्टॉप है द जमील खान सिर्फ सरा नौ लगे सर के करी सिर्फ सर युवा पीला चाय जरूर सही दासी मौलाना सिर्फ मंगल मेले के दासी बतो से चाय अल तक युवा पीला चाय जरूर सर सही द जमील खान सिर्फ सरा ठीक छ वेख करना चाहिए नेक्स्ट विच बाई सरंग ये बिल्कुल ठीक ठाक प्रोग्राम नाइस से टांक रेडियो बांधे वैसे ठोलो था सलाम मिली थी ढेर रजिया था मनना मैसेज के वाले वैसे सलाम कबूल का तासु द्वड़ता जयमा नंबिहान बिठनी मनी हेलना वैसे लकी मरवतना मासरा वड़ू के अपनान हम दई आवाज जे प करक रेडियो बने होके देर रजिया तो मनना यो जहान मैंने ना और बल में शुरू वन ना मैं शुरू होगा आवाज ओके दे सही दाई डेरा डेरा मनना वैसे असलाम वालेकुम तारिक भाई सरंग ये बिलाल यमादो जिला करक दर दरिश खेलना वैसे जमा पहला मैसेज दे प्रोग्राम के डेरा मनना फर्स्ट टाइम दे मैसेज करे दे नो प्रोग्राम की तरफ तो वेलकम और हर कलीब ये इश्मा कॉस्मेटिक प्रोग्राम के नेक्स्ट वेलकम मामू जान मैं हूं आसमानूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला आपको और सब लिस्टर को स्पेशल सलाम सईद वालेकुम असलाम डेरा मनना और तो सब बिल्कुल खराब के लिए इमदादुल्ला जनसोसा देशमा टोल प्रोडक्ट मिले जी डेरा मनना आसमा वजीर लोया हजर से टोल प्रोडक्ट जिंदाबाद लोई चढ़े सही डेरा मनना थैंक यू मैसेज के बोले यो जहान बनना हाजी बिल्कुल टाइम हर सर कम दाई प्रोग्राम इश्मा कॉस्मेटिक थे मोतवेली सुबह दोपहर तारीख तो उस कॉलर जी हो मजीद कॉल चुकम दागा सा प्रोग्राम के नशम से मिले बोले जका जी सिर्फ और सिर्फ द्रे मिनट मोसरा पोती दी बिया बजदर ना इजाजत चुकम दे हगा उखलम नो बिल्कुल दीन अलवाचा मैसेज फारूक खटक मैसेज करे दे तो थोड़े रजियाता मनना के भी शाफिया मैसेज करे दे वानना नो तो थोड़े रजियाता मनना के बीच मैसेज देव प्रोग्राम के दीन अलवा वेची अमान उल्ला वजीर मैसेज करे दे तो थोड़े रजियाता मनना पूरा मैसेज नशम से बोले बोले जगह टाइम चुकम दागा देर सर कम नो दे दजन हकी बिल्कुल हन्ना ठीक सा वैसे असलाम वालेकुम भाई इंजीनियर मसूद भाई बखेर रुगले नसीम सा खबर दे वो लिखा लेदा हाजी आशिक गुलाब भाई सरा विच दो टोल प्रोडक्ट चुकम दे मिला भी सही डेरा जी तो मने ना पर बादर हेल के आशिक गुलाब भाई चुकम दे देश में टोल प्रोडक्ट मिला भी जी नो डेरा डेरा मने ना छे प्रोग्राम के दे कॉल वक मैसेज वक डेरा मनना खजी दिन लवा बलमंग ते मैसेज करे दे खजी तुस मैसेज युति हो कोशिश को छी टोल प्रोग्राम के शामिल का मैसेज करे दे रुमाना हचक मैसेज करे दे फ्रॉम करक करक रेडियो बने आवाज ओके दे और वचे इश्मा कॉस्मेटिक का टोल प्रोडक्ट इस्तेमाल हो और सही था यची इश्मा हामिद मेडिकल स्टोर की सरा मतलब देश में टोल प्रोडक्ट मिला भी जी सही था ठीक छोटे रमन ना मैसेज को बोले यो जहान मनन मैसेज देवक देने लगे असलामीकुम स्वीट भाई भजन संग आवाज ओके दे
سمت ڈھکا کبھی او وچ از ڈاکٹر زیا ڈومیل نا ڈیرا منا نا لویا خزا شی تو اس کو میسج کو بولی او دین لوا چا میسج کرے دی وچ طارق بھائی سنگئی ماشاءاللہ باز جو کی دی اشما مہین دا لکی مروت نا میسج کرے ڈیرا منا نا اشما مہین چے پروگرام کی دی میسج کو مولانا عبد الحق سے میسج کرے دی مولانا سے ڈیرا ڈیرا منا نا یو جہان منا نا بالکل منگل ملے کی پ ہائبر پلازی کی دکان نمبر 4 کی دا مولانا عبد الحق سے سرا دیشما ٹول پروڈکٹ سے ملے ویجن مولانا سے ڈیرا زیادہ منا نا خان ملک مسئلہ میسج کی تو ڈیرا زیادہ منا نا کی دین لوا چا میسج کرے دی آشا میسج کرے تو ڈیرا مننا ٹائم در سر ختم شوی انشاءاللہ نیکسٹ اشما کشمیری پروگرام کی در سر کیجیے بیا ملاقات اشما کشمیری پروڈکٹ ضرور استعمال کی ہر رائے کی تو اویلیبل دی کمپنی ہیلپ لائن نمبر بنی کال ضرور کے چرتے کے نمبر 0342 311 292 نیکسٹ پروگرام کی در سر کیجیے بیا ملاقات ترے برے دو لیلا بما

अच्छा नन बिल्कुल इतवार यानी एक ही शपादी इतवार तो वो तो सर सर और वे सर मेरे दे मो शादी मुबारक दा बारे जाना उस दाई और चेर तो सान दते उरुगुनी भी तो लगा लिसनर और थिंक दे पर स्पेशल डाले तेरे चाप कोर्स जो खुश होली भी चाप कोर्स जिकिम ने कहना यानी यानी यानी आज चेर तक के दसे नोर दे चाप कोर्स लो सिरा भी यानी मांगने भी तो लगे था डाले.

0: अरे फात खाट क्या वो प्रोग्राम और दाका नवल का प्रेम एकदा छोटी के लिए था मिल रखी की दाका ना पहले का क्या मिला उसका देर चुता मना अरे फात खाट कैंसिल कर कुछ रुकी था इसो मनोना मनोना वो चे हेलो एंड वेलकम टू द शो हाउ आर यू आई लाइक योर शो आई लाइक योर वॉइस आई लाइक योर स्माइल एंड सो स्वीट सलाम टू ऑल फ्रेंड इट्स मी किंग बूम मंजरलाल देर चुता मना बूम मंजरलाल वेलकम यू जहान मनोना शुक्रिया वो चे दादा डाले भी आलिया और अक्षेता और नया जन खेलता दस
1: लड़क
0: विने में दरला धरखड़े दस लड़क विने में दरला धरखड़े न पोहाया राज दे वन पे जान दामा सुमल वजीर थाने देर जो तमाना सुमल वजीर थाने यो जहान मरना शुक्रिया नो लिसनर बाकी मैसेज मार के क्या ना अब तो कहीं दर्शोर यू मखेरो ना विज़िवी बियाव बियाव क्या ना चारा मिरोल मैसेज पर दर्शोल और जो कुशल के यार टोल मैसेज ना शामिल सी इट्स मी सर ऑफ फ्रॉम करको प्लीज शेयर दिस पोएट्री फॉर यू फर्ज की तरह तुझको याद करते हूँ फर्ज की तरह तुझको याद करते हैं मंजूर नहीं है तेरा कजा हो जाना ओके खुश रहो देर जो तमन्ना शुक्रिया आई महानी अफाव चिमिदी गुलाले तकाचे दे जोन ख्याल दसोती जकाचे साबो करीता वर्षा या पशापर से यार पठाओ मिड हाथ से हाँ पुबानो के ओ क्या ये महानी अफा देर जो तमन्ना आचा विचे खान मालक अलमासे तो ये क्या ना जो जोन ख्याल दसोती अदा से नीचे पटाकड़ी में भी पशापर के हो रहा ओए है गुलाले गुलाले और वे क्या ना और वे क्या ना नो मैसेज ओके क्या ना

0: तभी हर खास वेटिंग वेटिंग वेटिंग मौज मस्ती तभी हर खास
1: ओचे भाई जाना शहजादी में सोचे थे गुलगुल वजीरे साना भाई जाना डाटा पता तो लिख पता डाली भी डाले भी डाले तो अच्छे दुनिया फानी दा फाते कीरी दुनिया फानी दा फाते कीरी
0: तासो इंतजार कोई हत्म मोगिला बशे
1: and arma o aina hatak tam salam alaikum salam tere chu tamanna behada behada manana